0: हम कौन होते हैं जज करने वाले कि कौन बंदा परफेक्ट है और कौन नहीं है?
1: My disability has everything to do with who I am today.
2: Take life as a challenge, not as a problem.
0: नीचे गिराया नहीं है, ऊपर उठाया है. ये खुद पे फखर है और मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है.
2: You have to throw away the thoughts that you cannot do things on your own.
1: I deserve respect, same as any other person.

0: मेरा नाम आशा शौकत है, मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। बेसिकली जो मेरी डिसेबिलिटी है ना वो कहलाई जाती है माइनर सीपी। मेरी डे बाई डे यही जंग होती है, जहाँ मैं जाऊँगी जहाँ कोई इशू मुझे नज़र आएगा जरूर जब पॉइंट्स हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रैंक बनवा लिया। ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये हम सब का काम।
1: I think sport has always been in me. But I think I went a bit far with netball. I played for the national team for the World Youth Team Cup in Canberra in 1988. Supposed to continue with the Asian Games, but I got my injury. My name is Yohanis Adnan. I'm from Malaysia. I'm 56 years old and I'm currently working as a lecturer in the sports faculty here in Malaysia, Kuala Lumpur. In 1990, I got my spinal cord injury. Test after test after test, and I said, okay, why I'm not getting back my motor control. I was still young, 22. To me, it's not the end of everything because it's basically a new chapter.

बहुत सारे सीनियर्स कहते हैं, बेटा आप वो काम कर रही हो जो इस सोसाइटी में आज से पहले किसी ने नहीं किया, तो आप अपना इदारा क्यों नहीं बुलाती। मैंने कहा सर जी, मुझे पर्सनली ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह के साथ रब्ता रखना चाहती हूँ और मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। कहते नहीं बेटा आप करो, आपकी थॉट बिल्कुल अलग है। वहाँ पे मैंने बैठे बैठे ना मेरे मुंह से निकला जन्नत। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जन्नत बनाना चाहती हूँ। मैं सेशन देती हूँ डिफरेंट जगहों पे जाके, जैसे स्कूल्स हो गए, इदारे हो गए, वहाँ पे जाके प्रॉपर मैं अवेयरनेस देती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि मैंने लोगों के क्वेश्चन आंसर से झुकना नहीं है, उठ के खड़े होने और उनका जवाब देना है। ये था कि वुमन की एक्सेसिबिलिटी का इशू, वुमन के हकूक का इशू, वुमन की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें उनको क्या क्या ज़रूरियात होती है। अगर किसी के घर में कोई इशू बनता है तो वो पर्सनली भी मुझे मिलते हैं और मैं उनको सॉल्व करती हूँ।

0: हम कौन होते हैं जज करने वाले कि कौन बंदा परफेक्ट है और कौन नहीं है?
1: My disability has everything to do with who I am today.
2: Take life as a challenge, not as a problem.
0: नीचे गिराया नहीं है, ऊपर उठाया है. ये खुद पे फखर है और मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है.
2: You have to throw away the thoughts that you cannot do things on your own.
1: I deserve respect, same as any other person.

बहुत सारे सीनियर्स कहते हैं, बेटा आप वो काम कर रही हो जो इस सोसाइटी में आज से पहले किसी ने नहीं किया, तो आप अपना इदारा क्यों नहीं बुलाती। मैंने कहा सर जी, मुझे पर्सनली ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह के साथ रब्ता रखना चाहती हूँ और मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। कहते नहीं बेटा आप करो, आपकी थॉट बिल्कुल अलग है। वहाँ पे मैंने बैठे बैठे ना मेरे मुंह से निकला जन्नत, क्यों? क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जन्नत बनाना चाहती हूँ। मैं सेशन देती हूँ डिफरेंट जगहों पे जाके, जैसे स्कूल्स हो गए, इदारे हो गए, वहाँ पे जाके प्रॉपर मैं अवेयरनेस देती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि मैंने लोगों के क्वेश्चन आंसर से झुकना नहीं है, उठ के खड़े होने और उनका जवाब देना है। ये था कि वुमन की एक्सेसिबिलिटी का इशू, वुमन के हकूक का इशू, वुमन की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें उनको क्या क्या ज़रूरियात होती है। अगर किसी के घर में कोई इशू बनता है तो वो पर्सनली भी मुझे मिलते हैं और मैं उनको सॉल्व करती हूँ।